نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة

अभी आप FM 100 से सुन रहे थे तिलावत कुरान पाक, तिलावत कारी वही जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज शमशाद अली खान की थी।

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे ज़हनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज है, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना न भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर फातिमा जहरा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा पैराथायराइड ग्लैंड, कमी और ज्यादती के असरात। सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 2 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीनों की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन, खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
4: कूल किंग.
5: देख के नहीं चलाता क्या?
6: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
10: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार.
11: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
12: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है. पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है. टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट. प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें. ignite.org.pk पर.
0: This program is brought to you by
13: Tufan hai har jeet ki pehchan hai
7: and Cool King hair oil jaise chalta phirta AC.
10: And agar aap hain drive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
0: And
14: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
15: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
17: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
18: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
19: ہماری ذمہ داری ہے.
18: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
19: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: Like us on facebook.com/FM247365. FM 100.
19: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
20: السلام علیکم پاکستان.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये क्लाउडी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे होंगे. और अपनी सुबह का आगाज करना चाहिए अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी. होपफुली आपने फजर की नमाज पढ़ ली होगी और कुरान शरीफ भी. हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ और आज हम पढ़ रहे हैं सूरह नसर का तर्जुमा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी और तुम लोगों को देखोगे कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं तो अपने रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बयान करो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है. और इस आयत को आप जब इस सूरत को आप पढ़ते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कैसी फतह दी. और लेकिन जंग तो करनी पड़ती है जीतने के लिए और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस बात की भी बड़ी अहमियत है कि अपने रब की तारीफ करते रहे, पाकी बयान करते रहे और अस्तगफार करते रहे. अस्तगफार की बहुत ज्यादा अहमियत है. और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, कल ही मैं किसी का बयान सुन रही थी, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी दुआएं कबूल हो तो सुबह शाम अस्तगफार किया कीजिए, पढ़ा कीजिए. और वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और फिर आपको आज का टॉपिक भी बताते हैं. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। और तो आप मेरे ख्याल से आपका ईमान या आपका फेथ या आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर, वो कभी नहीं बदलने चाहिए। और आपकी मासूमियत जो आपके कहते हैं ना इनर चाइल्ड, वो भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोग जो है ना बड़े सीरियस हो जाते हैं और अजीब से भी हो जाते हैं कि जी वक्त मतलब कुछ बेसिक। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं बदलते, वो मतलब उनको अपने वो बड़े होके भी थोड़े से क्यूट से रहते ही हैं। और कुछ लोग तो फिर आप बोलेंगे यार जमीन आसमान का फर्क आ जाता है बचपन और जवानी में। तो ये है कि कुछ चीजें आपको नहीं बदलनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जिनको जरूरी होता है वक्त के साथ साथ बदलना। और ये फर्क मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीजें बदलनी चाहिए कौन सी चीजें नहीं बदलनी चाहिए। तो हमें आप मैसेज करें आज समय के फेसबुक पेज पे या @RJSamia इंस्टाग्राम पे और आप हमें ये बताएं कि कौन सी चीज बदलनी चाहिए। और अगर काम की जगह आपकी अच्छी है या वहां पे सेट है और तो फिर आप उसको कभी भी ना बदलें, यू लाइक कंटिन्यू इफ यू आर हैप्पी। और कुछ लोग होते हैं जो बस बिला वजह ही बदल रहे होते हैं कि कहीं से ज्यादा पैसे मिले तो जी एक जगह से जंप वहां पे और उधर से फिर जंप वहां पे। खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत होता है कि वो बस जंप स्किपिंग हो रही होती है, जॉब हॉपिंग हो रही होती है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब 20-20 साल एक ही जगह पे काम कर लेते हैं। आई फाइंड इट क्वाइट एडमिरेबल कि 20 साल तो शादियां नहीं चलती, 20 साल आप एक ही जॉब कैसे कर सकते हैं। लेकिन खैर कंसिस्टेंसी ऑल्सो पेज ऑफ, अगर आपका दिल लग रहा है कहीं किसी के साथ तो वाई नॉट। और अभी हम प्ले कर रहे हैं उसमें भी वो स्पाइस गर्ल्स का गाना है, वो ये कह रही है कि भाई अगर तुम मेरा दिल जीतना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं ये ट्रैक।

0: एंड
1: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: एंड
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
3: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
5: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
8: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखा।
9: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
10: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सब कुटिया।
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
13: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
14: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
13: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
15: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं।
14: सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
13: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम होगी।
15: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
15: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
13: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
13: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ऑन FM 100।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए. हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: दिस इज द साउंड ऑफ योर क्लाउड बिल. दिस इज द साउंड ऑफ इट गेटिंग रीइंबर्स्ड. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
0: This program is brought to you by...
8: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
5: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
9: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM247365.
0: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: FM 100 traffic update.

0: नगरी और वहां से स्टेडियम रोड की जानेब आ रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है। जबकि नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानेब आने वाले ट्रैक पर तामीरी काम जारी होने की वजह से सड़क कार है और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
1: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: बिगारिया चेक, पैशन चेक, the cloud resources to scale, that's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: तूफान है, हर जीत की पहचान है,
6: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
0: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
7: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
8: जी यहाँ पे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हम भी आपके साथ साथ हैं और हमारे पास है आप लोगों के पैगाम। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि आप ऐसी कौन सी चीजें जो कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। और खैर कराची में मिलता है, पूरा कराची बदल दो, लेकिन चीजें हैं ऐसी प्यारी प्यारी जो नहीं बदलनी चाहिए। आबिद अमीर कह रहे हैं मौजू पर अर्ज है, नहीं बदलनी चाहिए वो आदत जो हमें चार सकती हो, खुल के हंसने और मुस्कुराने की आदत जो हमें खुश कर देती है, खूबसूरत खुशबूदार खाने, सुबह शाम हमारी खिदमत करते हुए बेगम, दोस्त, असासा जो हमें दोनों जहां में फायदा पहुंचाए, जैसे कि नमाज, कुरान, सुन्नत से फायदा उठाने की आदत। बस मैंने तो नीयत कर ली है। कितनी खूबसूरत बात है। सबसे पहले कुरान की बात करें, इतनी सुकून इस बात का है मुझे, किसी भी कुरान शरीफ में किसी किताब है जो मतलब आपको पता है कि नहीं बदलेगी कयामत तक, और बस उसी को आपने जो है ना वो फॉलो करना है, क्योंकि बाकी हर चीज में बदलाव आ सकता है कि कुरान पाक में नहीं। और फिर कुरान पाक पे उसी वक्त चलेंगे ना जब उसे पढ़ेंगे, वो भी तर्जुमे के साथ। अब अरबी में पढ़ के तो आप कुरान मजीद पे नहीं चल सकते, है ना। अब अरबी में तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ज़कात के क्या मसाइल हैं, और मतलब कि हक क्या होता है, वसीयत के क्या मसाइल हैं, और इस बात पे कि जी वसीयत कभी भी नहीं बदलनी चाहिए किसी की, और वसीयत को बनाना शरीयत के मुताबिक ही चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं कि वो एक ही औलाद को फेवर कर देते हैं या एक ही औलाद को जी गिफ्ट कर दे, या ये चीजें बिल्कुल मजहब के आई डोंट थिंक के साथ हैं। हाँ बहुत ही नालायक औलाद है उसको आपने आंख कर दिया। हाँ कोई प्रिफर्ड चीजें होती हैं, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, जमीन है, कारोबार है, तो उसमें शरीयत को मद्देनजर रखते हुए जरूर फैसले करने चाहिए। इसके साथ साथ अपनी बेटियों का और बहनों का हक जरूर जरूर देना चाहिए। और वाकई में आप किसी का भी हक खाकर आप अमीर नहीं बन सकते, लिटरली। अगर आप जो भाई बहनों का हक खाकर उनको लगता है कि जी बहुत अमीर हो गए हैं, तो हर वक्त उस डर के साथ रहते हैं कि किसी भी वक्त उनके साथ कुछ हो सकता है और ये चीजें गायब हो सकती हैं। तो किसी का हक खाकर, चोरी कर आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते, ये बात तो है। अच्छा जी, और बड़ी अपनी खूबसूरत बातें की। उसके साथ उन्होंने कहा कि हंसने और मुस्कुराने की आदत, अब लोग जो है ना वो हंसते ही नहीं है। कराची का ये एक बहुत बड़ा मसला है, लिटरली। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो वेटर पहले आके आपको यूं देखेगा, और फिर अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में शुरू हो गए तो वो अंग्रेजी में आपसे पूछेगा सर व्हाट। मैं कहती हूँ भाई खुदा के लिए हम तो पाकिस्तान में हैं, ठीक है, तो ये अंग्रेजी बोलने की क्या इतनी आफत आ गई। और मुझे लड़के जो आपस में अंग्रेजी बोल रहे होते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, इतने जहर लग रहे होते हैं। मैं यहाँ कौन फॉरनर है, यहाँ किसको इम्प्रेस कर रहे हो, और फॉरनर जो सारे अंग्रेज नहीं होते, फ्रेंच भी होते हैं, तो मतलब यू नो ऐसे इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं, और वो उन लोगों के सामने ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। इर्द गिर्द को पता होता है ना कि ऐसी आम आवाम बैठी है, इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं। भाई अपने मुल्क में तो उर्दू बोल लो भाई, बाहर खड़े हुए हो, लिटरली जस्ट टू शो ऑफ। और सर वेटर आके वो इंग्लिश में शुरू हो जाता है, और फिर वो कॉफी, और फिर वो आपका मेन्यू जो है ना वो मेरे ख्याल से इंग्लिश लिटरेचर में एमए करने वाले लोग भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उस मेन्यू में है क्या, कि वो डिश की इतनी तारीफ, तीन लाइनों में तो डिश की तारीफ लिखी होती है, भाई सुई सही से बता दे कि क्या है। मैं तो बोल रही थी भाई क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बता दो कि क्या है। अक्सर मैंने एक इटालियन रेस्टोरेंट में एक चीज ऑफर की जिसकी बड़ी तारीफें लिखी हुई थी, जब वो प्लेट में आई है तो मैंने कहा ये क्या चीज है भाई, इससे तो मेरा क्या एक निवाले दो निवाले खत्म हो जाएगी, पैसे है इतने दे रहे हैं। उन्होंने बाद में उन्होंने मुझे कॉम्पनसेट करने के लिए डिजर्ट दे दिया था फ्री में, लेकिन मैं कहा ये क्या है, ये क्या है। तो मैं यही बोलूंगी खुदा के लिए हंसना मुस्कुराना शुरू कर दें और अपने वेटर्स को ट्रेनिंग दें, जो भी आपके लोग रिसेप्शन पे हैं कॉल सेंटर्स में, उनको बोलो कि बिला वजह हंसा करो, हाँ हाँ हाँ हाँ करने की प्रैक्टिस किया करो। और अच्छा ये जरूरी है कराची के लोग भी जो जा रहे होते हैं रिसेप्शन पे, वो भी इंतहाई चढ़े हुए हैं, तो पहले तो मैं होती ना वो लोग चेकिंग कर रहे होते ना, मैं लोगों की स्माइल चेक कराती, सर आप स्माइल नहीं करें आप अंदर नहीं आ सकते, नहीं नहीं ये बिल्कुल स्माइल नहीं है थोड़ा ज्यादा, हाँ हाँ हाँ इतनी हाँ अब सही है स्माइल, अब आप अंदर आ सकते हैं। खैर मेरा ऑफिस होता तो मैं तो मस्ट करती है कि पहले 15 मिनट लोग सारे मेरे एम्प्लॉयज डांस भी करेंगे ताकि वो एनर्जेटिक फील करें। खैर वो मेरा ऑफिस है, रांची के लोगों को क्या हो गया सीरियसली, इवन आप इन गाड़ियां बैठे इन ड्राइव में, वो इन ड्राइव वाला का इतना गुस्सा होता है, चलिए 5 मिनट मैंने इंतजार कर लिया और मतलब मेरी तो मतलब क्या हो कयामत आ गई, और कैसे भाई बंदा बोलेगा ऐसे सड़े हुए आदमी के साथ मैं इतना लंबा सफर कैसे करूंगा है। तो मैं आपको बताऊं खास भी इन ड्राइवर के आंगों वालों को, मैं कहती हूँ भाई खुदा के लिए ढंग के लोगों को आप लोग जो है ना ये ऐप यूज करने दें, मतलब हर एक को तो आपने ऐप यूज करने दे दिया है, अगर आप खुश मिजाज नहीं है खुदा के लिए घर से बाहर मत निकलें, अपने घर में ही रहें, क्योंकि हो सकता है बड़े सेठ हो आप घर में रहें, क्योंकि बाहर आप वही लोग घर से बाहर निकलें या काम करें जिनकी चेहरों पे एक दिल नशीन मुस्कुराहट हो कि सामने वाला बंदा अपनी परेशानियां भूल जाए। मगर आज के क्या करें सड़े हुए लोग, मुझे मतलब मेरा मसला है, मुझे बदखलाक लोगों से ना बड़ा मसला है, स्पेशली पीपल जो रिसेप्शन पे होकर भी हंसते नहीं है, मतलब आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों है आप दुनिया में, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिटरली। साबित अमीर वेरी हैप्पी टू रीड योर मैसेज, आई एम श्योर कि वो आप अच्छा खुश मिजाज ही होंगे अपनी लाइफ में भी, और वो कह रहे हैं खुश रहने की आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए वरना आप बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े जी हाँ अंकल, अब मेरे दोस्त इमरान खान को देखो इतनी उम्र में भी कैसे यंग है, मुझसे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम में खुश रहते हैं, मिसाल तो देनी थी समिया कोई ना कोई। हाँ जी बिल्कुल, और वो मतलब एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, ये भी एक बात है कि कहीं भी वो बंदा एक्सरसाइज ना छोड़े, और वो कहीं भी लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं वर्कआउट करते रहते हैं तो वो बंदा ज्यादा से ज्यादा यंग और दिलकश रहता है। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए यही होता है, अरे यार आप तो बिल्कुल नहीं बदले, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। खैर ऐसी बातों से मुझे याद आते हैं फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा भी इतने सालों से काम कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ वो यंग ही होते जा रहे हैं, और खैर और इसी बात पे हम उनके ड्रामे का गाना ये प्ले कर देते हैं, और ये डेडिकेट कर रहे हैं नसीम पटेल जी को, जो मुझे पता है इनको ड्रामा भी पसंद है और गाना भी, आइए सुनते हैं।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
2: के अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
3: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.

0: एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दें मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर फातिमा जहरा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा पैराथायराइड ग्लैंड, कमी और ज्यादती के असरात. सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 2 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा.
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है, हर जीत की पहचान है,
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
4: एंड

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा और आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कभी भी नहीं बदलनी चाहिए. और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास हैं. वसीम अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि गुड हैबिट्स शुड नॉट बी चेंज. आई गो टू गार्डन इन मॉर्निंग फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग एंड टू इनहेल फ्रेश एयर but I'm not regular. I at times skip this activity for one reason or the other. I have observed that many people regularly come to the garden every morning to reap benefits of the morning. People there remind me to be regular in the morning to stay fit and healthy. तो वसीम अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि जी वो सुबह सुबह जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पे और ये एक अच्छी हैबिट है और अच्छी हैबिट्स को नहीं बदलना चाहिए. खैर सुबह सैर, सुबह की सैर एक बहुत ही क्या कहते हैं फरहत बख्श एक एक्टिविटी को क्या कहेंगे. अच्छा आजकल मैं पुराने ड्रामे देख रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी उर्दू मैं थोड़ी बेहतर बनाऊं. अच्छा और तो ये वाकई में सुबह की सैर मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है सेहत के लिए. आप जितना टाइम ग्रीनरी में गुजारते हैं वो अच्छा है और अच्छी आदतें नहीं बदलनी चाहिए. खैर आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कोई अच्छी आदत है भी या नहीं. कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुश्किल से ही शायद कोई अच्छी आदत हो. अच्छी आदतें नहीं बदलनी चाहिए. सुबह उठने की जल्दी उठने की जो एक आदत है वो बहुत अच्छी है. जो लोग सुबह उठते हैं वॉक करते हैं मैंने देखा कि उनकी उम्रें भी लंबी होती हैं बीमारियों से भी दूर रहते हैं. और जो मुश्किल से ऑफिस जाने से पहले बस 10 मिनट पहले उठने और रात को देर देर तक जागते हैं मोबाइल फोन जैसे कि मोबाइल फोन पे टाइम गुजारना तो मतलब हरफे आखिर हो गया है कि बस कंपलसरी है. और लोगों की किताबें पढ़ने की आदत नहीं. मैं कहूँ अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना आप फिजिक्स की किताब खोल के देख लें ऐसी नींद आएगी ना आपको क्योंकि आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और आप उन्हें सो जाए. तो अपनी नींद को प्रोटेक्ट करें ताकि सुबह उठ सकें और फजर की नमाज पढ़ें क्योंकि नमाज आप पे माफ नहीं है. ये जो लोग नहीं रातों भर लिटरली मुझे वाकई में बड़ी टेंशन होती है नाउ अभी क्योंकि चूंकि मैं एक सुबह का इंसान बन गई हूं. पहले मैं 1 बजे भी मेरा शो होता था और मुझे लगता था कि 1 बजे सुबह है मेरे लिए सुबह दे दी और मैं कहती अल्लाह इतनी जल्दी क्यों रखा है मैंने शो. दैट वॉज मी बैक देन. और अब मैं कहती हूँ फजर की नमाज नहीं पढ़ते. हाउ सैड इज दैट. लेकिन अच्छी आदत है अपने अंदर से नहीं बदलनी चाहिए. आपके अंदर कुछ ना कुछ जरा माइक्रोस्कोप या लेके ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए कोई मतलब नहीं माइक्रोस्कोप नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमे ढूंढे के कोई अच्छी आदत तो होगी और वो अगर आपको मिल जाए आदत तो उसको ना बदले. अच्छी आदतों को और भी पैदा करनी चाहिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज वसीम अहमद सिद्दीकी साहब कि अच्छी आदतें नहीं बदलनी चाहिए कमिटमेंट नहीं बदलनी चाहिए. कमिटमेंट टू लर्निंग मतलब कि आप इंसान के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि वो हमेशा नई नई चीजें सीखता रहे और आगे बढ़ता रहे. अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे वक्त के साथ साथ. अपने आप को ज्यादा अमीर ज्यादा काबिल ज्यादा खुश इखलाक बनाने की कोशिश करे. मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलती हूँ जो उन्होंने बस गिव अप कर दिया है जो कहते हैं कि बस यार हम तो ऐसे ही हैं और हम इतने ही अच्छे इखलाक वाले हैं और हमें तो कोई बुराई है नहीं. मतलब क्या मतलब मसला क्या है हमारे इखलाक के अंदर. और मैं तो चाहती हूँ कि मुंह में बोलूंगी आप इंतहाई बद इखलाक इंसान. कभी बोला किसी से कि आप इंतहाई बद इखलाक इंसान है. मैंने तो खैर काफी डायलॉग्स बोले क्योंकि मैं एक इंतहाई फिल्मी इंसान हूं तो मुझे बहुत शौक है कि फिल्मों वाले डायलॉग जो है ना मैं बिल्कुल मुंह पे बोलूं लोगों के कि आप इंतहाई दिस दिस दिस दिस एंड डैश डैश डैश है. और मैंने पहले से सोचा हुआ है कि मैं अगर मेयर कराची से मिलूं तो मैं क्या बोलूंगी उनसे. मैंने सोचा हुआ है मैंने कहा मैं अच्छा सिंध गवर्नमेंट के किसी भी इंसान से मैं अगर मुझे मिले तो ये पूछूंगी आपको कैसा लगता है कि लोग आपको इतना नापसंद करते हैं. मतलब हाउ डू यू डील विद दैट. मतलब नींद कैसे आती है रात में आप लोगों को. तो ये एक दो सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि यार मतलब बड़ा हौसला है कि लोग आपको दिन रात कोस रहे हो दिन रात बुरा भला बोल रहे हो हैं. आप बेचारे पुल बना रहे हैं हर चीज में वो आपकी बुराई ढूंढ रहे हो फिर भी आप मीडिया में आकर बातें करते हैं लोगों से. बड़ी बात है बड़ी बात है. तो मेरे ख्याल से ये एक बात है. खैर उधर हमारे जर्नलिस्ट भी कोई शरीफ नहीं है और उनके बारे में मुझे पता चला है कि वो भी कोई इतने अच्छे लोग नहीं होते. मीडिया के लोग भी अपने फायदे के लिए ही खबरें लगाते हैं भले वो हक में हो या उनके खिलाफ. खैर हमारी बातें अब यहां तक खत्म और अब मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत. उम्मीद करती हूं कि आपका आगे आने वाला वक्त अच्छा गुजरे अच्छा वीकेंड हो आपका और आपको हमारा शो पसंद आए. ओह मोहम्मद उस लगारी ने कहा है प्रोग्राम लाजवाब. शुक्र है आपने सलाम के अलावा भी कोई बात की. थैंक यू. और बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने कीमती वक्त निकालकर हमें मैसेजेस किए और
मोहब्बत में ना इंसान को बिल्कुल ना पक्का होना चाहिए, मतलब कि वो कहते हैं यार अब मोहब्बत कर ली, अब कमिटमेंट कर ली, अब मैंने अपने आप की भी नहीं सुननी वगैरह वगैरह. इसी बात पे मैं आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ बाजी, ये ट्रैक कि बस चाहे मतलब सिर दी बाजी लग जावे, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने नहीं बदलना. एंड आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: किसी ने कहा था पैसे बचा।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद मंशियात के बायस सेहत और जिंदगी के संगीन मिसाइल का सामना कर रहे हैं। ये आदाद शुमार मंशियात के बढ़ते और इंतहाई तेजी से बदलते रुझान के पेश नजर पैदा होने वाले पेचीदा मिसाइल से आगाह करते हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी चैलेंज से महफूज नहीं। 2013 के कौमी सर्वे बराए मंशियात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 67 लाख अफराद मंशियात के इस्तेमाल के शिकार हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 68% आबादी 30 साल से कम उम्र, जबकि 27% 15 साल से कम उम्र है। यही नौजवान आज एक फैसला कुन मकाम पर खड़े हैं, जहां वो मंशियात के खतरात का सामना भी कर रहे हैं और एक रोशन मुस्तकबिल, रोशन महफूज और तरक्याती याफ्ता पाकिस्तान की उम्मीद भी है। ये सिर्फ आदाद नहीं बल्कि जिंदगियां, खानदान और मुस्तकबिल हैं, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस जंग में सबसे मौसर हथियार आगाही है। वालदैन, असातिज़ा, मीडिया, तबकात और नौजवान, हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों को मंशियात के खतरात से महफूज रखें। आज इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम आगाही को अमल में बदलेंगे, उम्मीद को ताकत बनाएंगे और मिलकर एक मंशियात से पाक पाकिस्तान की तामीर करेंगे। आपका एक फैसला जिंदगी बना सकता है और एक नशा सब कुछ मिटा सकता है। फ्यूचर की रेस में नशा शॉर्टकट नहीं, डेड एंड है। 26 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि याद दहानी है कि जिंदगियां कैसे बचाई जा सकती हैं। एक कौम, एक मंजिल, मंशियात से पाक पाकिस्तान।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: 45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 to 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और

0: पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
1: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 247/365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना न भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर फातिमा जहरा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड, कमी और ज्यादती के असरात। सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 2 जुलाई 2 बजे।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: स्पूकिंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one FM 100.

तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। अब इस आगाज के साथ साथ आपने करना यह है कि लगानी है अपनी हाजिरी और हमें बताना है कि जिस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीकाकार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल अहवाल बता सकते हैं और कैसा गुजर रहा है आप सबका आज का दिन बखूबी आप हमें ये भी बता सकते हैं। आज का दिन आई होप सो कि अच्छा गुजरा होगा, लेकिन यार आज ना थोड़ी गर्मी है। कल का मौसम तो बड़ा अच्छा और खुशगवार था और आज मैंने सबसे पहले आते साथ ना सबसे पहले कराची का दर्जा हरारत देखा है कि आज महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत कितना है, तो 37 है। ओ माय गॉड, आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है। हालांकि बादलों का आना जाना भी है लेकिन थोड़ी गर्मी है, थोड़ा जैसे हब्स है जो कि आज महसूस किया जा सकता है, जिससे इस चीज का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हब्स जो है वो बारिश की निशानी होता है। यानी कि जब बहुत ज्यादा हब्स हो जाता है तो इट मीन्स के कोई सिस्टम आने वाला है। क्या वाकई कोई आने वाला है यार? आ जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन ऐसा कोई मुझे इनकरीबी लग तो नहीं रहा, लेकिन बेशक खुदा जो चाहे वो हो सकता है और उस खुदा ताला के आगे सारी प्रेडिक्शन और तमाम चीजें जो हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, बिकॉज जो अल्लाह ताला चाहता है वैसा ही होता है। तो वैसे अगर हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा कि ठीक बारिश हो जाए कराची में, क्योंकि इस वक्त आज की गर्मी को मद्देनजर रखते हुए मस्त से कि यार बारिश ना होना जरा जरूरी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करेंगे हम, क्योंकि उम्मीद पर है दुनिया कायम और उम्मीद का सिलसिला रहेगा जारी। और हमारे पास जो है वो मैसेजेस भी आ चुके हैं। जरी नूर कहती हैं, सलाम, कैसी हैं, तबीयत कैसी है, बहुत दुआ आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं जरी नूर, एंड वालेकुम अस्सलाम। और पानी पर हमने बात की कि बारिश के पानी की बहुत तलब हो रही है कि बारिश हो जाए और मजा आ जाए, लेकिन लेकिन लेकिन आज महसूस किए जाने वाले दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड टू कि भाई बारिश हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी ये तो आई डोंट नो। अच्छा जी, हमारे पास एक और मैसेज भी आया है, कहते हैं आप ही सलाम, हम लोग फाइनली जाने का प्लान बना लिया है। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जाने का प्लान बना लिया भाई? जिस पे फाइनली भी लिखा जा रहा है, यानी कि कोई ऐसा प्लान है जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्लान किया जा रहा है या फिर बहुत बेजारी के साथ प्लान किया जा रहा है? लेकिन आजकल ना हम लोग इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि मैसेजेस के जरिए बिना इंसान की फीलिंग्स को बड़ा आसानी से समझ लेते हैं। वैसे तो आप जब किसी से बात कर रहे हो फेस टू फेस तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपको बता देते हैं कि वो उदास है, वो खुश है, वो मायूस है, वो गुस्से में है, वो किसी चीज की एक्साइटमेंट शो कर रहा है, तो बहुत आसानी चेहरे से पढ़कर तो बता दिया जाता है। लेकिन आजकल हम इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि मैसेजेस के जरिए भी अब लोगों के हाल अहवाल पहचान लेते हैं, अगर उसमें इमोजी लगाया हो या ना भी। We are getting talented day by day. तो भाई कहाँ जा रहे हैं हमें जरूर बताएं, जब तक हम ट्रैक शामिल करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ जाने की खबर हमें दे रहे हैं।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है।

वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो आ चुके हैं हम वापस, और जरीन नूर से पहले भाई हमारे पास रीमा का मैसेज आया था, और ये भी बड़ा मजे का बड़ा प्यारा सा मैसेज है। तो भाई मटकी पे मटका, मटकी में पानी, फातिमा आप ही परियों की रानी, ये हुरिया बोल रही है आपको। फातिमा जानी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच भाई। आज तो हुरिया ने जो है ना वो मेरा दिन बहुत ही शानदार कर दिया है इतने प्यारे से मैसेज के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू हुरिया। बहुत सारा प्यार आपके लिए मेरी तरफ से। खुश रहो हमेशा, हंसती मुस्कुराती रहो, और बहुत प्यारे से मैसेज के लिए बहुत सारा प्यार आपके लिए। मुझे इतना ही प्यारा मैसेज लगा कि मैंने अभी अपने दोस्त को भी बताया कि देखो भाई मेरे पास एक ये मैसेज मौसूल हुआ है जो कि हमें जो है वो हुरिया ने किया है। सो थैंक यू। अच्छा भाई इसी के साथ साथ हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूं बिल्कुल ठीक ठाक। कहते हैं आई एम गुड। कहते हैं कि ऑफिस से सुन रहे हैं, ये हमें बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं दिन अच्छा गुजर रहा है, आलू की कतलियां हैं इनके लंच में। कहते हैं आपका 2 डेज लंच, ओ माई गॉड, मैंने 2 दिन से अपना लंच नहीं बताया, दिस इज सो सैड। कहते हैं मौसम को क्या कहती हैं आप? बिल्कुल जी, आपको तफसील से बताएंगे कि मौसम को हम क्या कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमसे ट्रैक की रिक्वेस्ट भी की है। ठीक है जी, तो डील डन है, हम इसे जरूर शामिल करेंगे। और इसी के साथ साथ हमें जो है वो जरीन नूर भी कहती हैं कि ये ट्रैक शामिल कर लें। ओके, यानी कि जिम्मेदारी डाल दी है मेरे लिसनर्स ने मुझ पर कि जी ये ट्रैक को आपने करना है शामिल। तो ठीक है जी, डील डन करते हैं और जरूर हम करेंगे इसको शामिल। उसी के साथ साथ भाई आज 2nd of July भी है, सो हैप्पी बर्थडे। अच्छा आज एक बड़ा मजे का दिन मनाया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे हंसी आ रही थी, और इस दिन का नाम है आई फॉरगॉट डे, यानी कि आज भूल जाने का दिन है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अक्सर औकात वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, और वो आपसे ये कह रहे होते हैं कि हाँ ये काम मैं कर तो दूंगा लेकिन ना मुझे याद दिला देना, याद दिला दोगे तो ये काम हो जाएगा। या अक्सर औकात बहुत सारे लोग जो है ना वो चीजों को याद रखने के लिए ये भी कर रहे होते हैं कि कोई मोबाइल पर अलार्म या नोट लिख लेते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन, ये करना चाहिए। आजकल डायरीज अगर आपके पास मौजूद हैं तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करनी है या कोई काम करना है तो आप उसे नोट करके रख लें। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को इसलिए भूल जाते हैं अक्सर औकात, एक मसरूफियत की वजह से, एक ये कि हाँ कर लेंगे या भूल। अच्छा हर दफा ये नहीं होता कि आप जानबूझ के भूलते हैं, कभी कभार वाकई में आपके जहन से वो चीज निकल जाती है। तो आज हम कह सकते हैं कि भूल जाने वाले भुलक्कड़ लोगों का दिन आज के दिन मनाया जा रहा है, एंड दैट इज सो इंटरेस्टिंग। तो भाई अगर कोई काम आपसे भी कहा जाए तो आप भूल जाते हैं या फिर आप याद रखते हैं? अच्छा मेरे अंदर तो इतना मसला है कि अगर मुझे किसी ने कोई काम करने को कहा है ना तो मैं जब तक वो काम ना कर लूं मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा होता। मतलब मेरी पहली ही प्रेफरेंस ये होती है कि पहले जो काम दिया गया है उसे जल्दी से कर लें, बाकी चीजें तो फिर होती रहेंगी। क्योंकि काम जब कोई आपको कह देना तो मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी पूरी करें और उसके बाद जो है वो बाकी काम करें। तो मेरे लिसनर्स भी कैसे हैं, भुलक्कड़ हैं या नहीं, हमें जरूर बताएं। चलते हैं भाई ट्रैक की जानिब, जिसकी रिक्वेस्ट जरीन नूर ने की है। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। रशीद खान आपका ट्रैक भी हमें याद है, जरूर हम आपको सुनाएंगे।

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
2: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and hello everybody. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Because you know that our and your with 12 to 2 in between, 12 to 2, what happened? Oh my God. I mean, 12 to 2, we are with you. So, it doesn't happen that we are with you in between. We are with you in between. We are with you in between. We are with you in between. We are with you in between. We are with you in between. और बिल्कुल भाई, जब मैंने कहा वापस आ ही गए तो आपको जरा हेलो हाय भी कर लेते हैं, अपनी हाजिरी भी लगा देते हैं, और इसी के साथ साथ आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रवायत तो आप जानते ही हैं कि एक अदर ट्रैक आपको डेडिकेट किया जाता है। तो बिल्कुल जी, सबसे पहले हम अपनी रवायत को कायम करेंगे, एक ट्रैक आपको डेडिकेट करेंगे, और लंच में कौन क्या खा रहा है इसके मैसेजेस ना आज सबने मुझे पहले ही कर दिए, तो ठीक है जी, उसे भी हम शामिल करते हैं, लेकिन पहले एक ट्रैक एंड देन वी विल बी राइट बैक।

0: Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you guys are tuned into FM 100 Pakistan. And aap sun rahe hain weekly radio program, which is Hormone Talks, and it's brought to you by Pakistan Endocrine Society and ETCO Group. So today we have Dr. Fatima Zahra with us, Associate Professor of Medicine, Jinnah Sindh Medical University, JPMC Karachi, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. So Jinnah, aaj jo hamare show ka topic hai, it is about parathyroid gland, aur hum baat karenge ki hum iski agar kami ho jati hai aur zyadati ho jati hai to iske kya side effects hote hain insani sehat par. So assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam.
0: Thank you so much, Dr. Fatima, for being here. And aaj hamare show ka basically jo topic hai, it's about parathyroid gland. To is hawale se hum baat karenge. Hamare listeners ko sabse pehle to aap ye bataye ki basically parathyroid gland jo hai wo hai kya aur iska function jo hai wo insani body mein kya hai.
1: अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: मैं जो है सबसे पहले तो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की और एटको दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए एक टाइम दिया है, नॉमिनेट किया है कि मैं इस प्रोग्राम में आके बात करूं. और एफएम 100 की ऑब्वियसली कि आप लोग जो है पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस मंथ में, जहां पे पैराथायरॉयड अवेयरनेस मंथ चल रहा है. ठीक है,
0: थैंक यू.
1: अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने के और ग्लैंड्स भी इम्पोर्टेंट हैं. तो इसका मेन जो पर्पस होता है वो है बोन का मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल रखना. और फिर उसके आगे इफेक्ट्स होते हैं बोन पे, किडनीज पे और जगहों पे होते हैं. तो ये एक अहम चीज है कि कैल्शियम को, क्योंकि आपने सुना होगा हर कोई कंसर्न रहता है कि मैं कैल्शियम की गोलियां खा लूं.
0: बिल्कुल
1: इजीली अवेलेबल हैं और लोग उसको प्रेफर करते हैं, ओवर द काउंटर भी हैं, प्रिस्क्राइब भी होते हैं. तो इसका जो मेन इफेक्ट है वो उस कैल्शियम के ऊपर ही है पैराथायरॉयड ग्लैंड का.
0: ठीक है, ठीक है. और ये जो बेसिकली ग्लैंड होता है ये जिस्म के किस हिस्से में पाया जाता है?
1: अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायरॉयड के जैसे में नाम आ रहा है तो ये उसके ही इर्द गिर्द यहाँ पे आपके नेक में होता है.
0: सही.
1: और ये चार होते हैं और ये दोनों तरफ थायरॉयड ग्लैंड के होते हैं, लोकेटेड है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन, क्योंकि ये होते बहुत छोटे से हैं और ये होते थायरॉयड के साथ हैं.
0: सही, सही. अच्छा, बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक कोई ऐसा हार्मोन बनाता है, और अगर वो बनाता है तो उस हार्मोन का बेसिकली काम क्या है, सवालों से थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि इस ग्लैंड का जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है. और हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है इसका, उस हवाले से हम ऑब्वियसली बात करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे. सो इस हवाले से बताएं कि कोई ऐसा हार्मोन बनाता है, और अगर बनाता है तो क्या, कौन सा हार्मोन है?
1: ऐसा ही है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है.
0: सही.
1: और इसका काम जैसे कि मैंने बताया है कि ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन रखता है. यानी कि कैल्शियम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो इसने फौरन रिस्पांस करना होता है. ठीक है, तो उसके नतीजे में पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाता है. जहां कम हुआ कैल्शियम वहां पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाएगा और वो इस कैल्शियम को ब्लड में नॉर्मल लेवल्स पे मेंटेन करेगा. अच्छा, ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर कैल्शियम के अपने आगे इफेक्ट्स हैं ऑर्गन्स पे, जिनको फिर कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली पैराथायरॉयड ग्लैंड.
0: सही, सही. अच्छा, जाहिर है हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कैल्शियम जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि कैल्शियम क्यों जरूरी है. जब कैल्शियम के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बोन्स के हवाले से क्लिक होता है. तो ऑब्वियसली जब कैल्शियम की बात हो रही है तो बोन की हेल्थ के हवाले से भी बात होगी. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम जब कम होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं. तो डॉक्टर साहब, ये बताया हमारे लिसनर्स को कि कैल्शियम की एक अहमियत को ना बहुत मामूली समझा जाता है, हमारे लोग इस चीज को इतना अहमियत नहीं देते हैं. तो कैल्शियम कितना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और ऑब्वियसली इसको भी एक बैलेंस रखना जरूरी होता है. ज्यादा कैल्शियम हो जाए बॉडी में उसका भी नुकसान है, कम हो जाए तो उसका भी नुकसान है. तो सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि कैल्शियम जो है वो इंसानी सेहत के लिए सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है.
1: देखिए, कैल्शियम के इफेक्ट्स जो है ना बोन पे तो हैं, जो हम जिक्र बार बार कर रहे हैं के बोन की हेल्थ के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा भी इसके इफेक्ट्स होते हैं. ये ना सिर्फ कि ये बोन्स पे इफेक्टिव है, ये बल्कि انسانی جسم میں ہارٹ پہ اور برین پہ بھی اس کے بہت سے افیکٹس ہیں, اس کے لیے بھی یہ نیسسری ہے, ضروری ہے. اس کے علاوہ گٹ پہ ہے, کڈنی پہ ہے, تو مختلف آرگنس کے اوپر کیلشیم کے افیکٹس ہیں, اور کم یا زیادہ ہو جانے کی صورت میں دونوں کے اوپر نیگیٹو افیکٹس پڑتے ہیں. تو اس لیے کیلشیم کو صرف اور صرف بون کی حد تک نہیں ہم وہ رکھیں گے لمٹ کے, جی اسی میں ہم سوچیں اسی طرح اس کو وہ کریں کنسیڈر, لیکن اس کو ہمیں ہر آرگن کے حساب سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ کیلشیم کی زیادتی یا کمی دونوں میں ہی جو ہے نقصان ہو سکتا ہے.
0: صحیح صحیح. اچھا, اب جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ کیلشیم جیسے کم ہو جاتا ہے باڈی میں, تو اس کے کیا سمٹمز ہیں, ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا کہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ کیلشیم کم ہو گیا ہے, اس کے کیا علامات ہیں, تھوڑا سا یہ ہمارے لسنرز کو پلیز گائیڈ کریں.
1: جی بالکل. اچھا, اگر کیلشیم کے لیولز جو بلڈ میں جو ایک نارمل رینج ہے جو ریکمینڈیڈ ہے اس سے کم ہو جاتے ہیں کیلشیم کے لیولز, تو یقیناً اس کا سب سے پہلے تو ہڈیوں پہ اثر پڑتا ہے کہ ہڈیوں کی گروتھ اس طرح نہیں ہوگی, نشونما جو ہو رہی ہوتی ہے اگر بچہ ہے تو گرو ہونے میں ہی پرابلم ہو جائے گا, بڑا ہو گیا ہے تو بھی اس کی ڈینسٹی جو مینٹین ہونی ہے اس کے اندر مسئلے شروع ہو جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو ہڈیوں کا درد اور جو ہے جسم کا درد, تھکاوٹ, یہ سارے جنرل سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ ایسی علامات ہیں کہ انسان کو فوراً یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کسی کو تھکن یہ شروع ہوئی ہے, تو جی وہ کیلشیم کی وجہ سے ہی ہے, اور بھی فیکٹرز ہیں لیکن یہ فیکٹر بھی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, نیورونز کے لیے ہے, تو انسان کو جو ہے ہاتھ پیر کا سن پن, کہ سن سن ہو رہے ہیں, یا پھر چہرے کے اوپر اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ جی سن پن ہو رہا ہے, یا جیسے رینگ رہے ہوتے ہیں, پیرستیزیا جیسے کہتے ہیں, اس طرح سے فیلنگز آتی ہیں. کسی ایکسٹریم کنڈیشن پہ جب بہت زیادہ کیلشیم کم ہوتا ہے تو کبھی کبھار پیشنٹس کو ہاتھ پیر کا مڑنا بھی فیل ہو سکتا ہے, اس کے اندر وہ اس کی بھی کمپلین کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے, اگر بہت ہی کم ہو جائے کیلشیم, یا کچھ لوگوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کیلشیم کی کمی جو ہے پتہ ہی چلتی ہے جھٹکوں کے ساتھ, فٹس, جو کہ جھٹکے ایک خطرناک بیماری ہے.
0: اچھا,
1: تو وہ بھی یا خطرناک علامت ہے, وہ بھی کیلشیم کے کم ہونے سے ہوتی ہے. اور ہارٹ کی بات کی تھی میں نے کہ ہارٹ کے اوپر بھی بڑا اس کا امپیکٹ ہے, کہ وہاں پہ بھی دل کی دھڑکن کے اوپر متاثر کر سکتا ہے, اس کو اثر انداز ہوتا ہے کیلشیم کا لیول اگر کم ہو رہا ہے.
0: صحیح. اچھا, آپ نے وہ مسلز کے جیسے ہاتھ پیر مڑنے کے حوالے سے بات کی, تو بیسکلی واٹ ڈو وی کال اٹ, یا مسل اسپیزم ایک یہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ مطلب جیسے آپ کھڑے ہوئے یا آپ بیٹھے ہوئے, جیسے آپ کو فیل ہوگا کرامپس ہو رہے ہیں, یا ایک دم آپ جیسے کھڑے ہوئے تو پیر ایک دم مڑا
1: ہوتا ہے,
0: اس چیز کے حوالے سے آپ بات کریں گی, رائٹ؟
1: جی, وہ ایک کرامپس بھی پڑتے ہیں, اور ایک ویسے خالی سن پن بھی صرف اور ہاتھ اور پیر میں,
0: ٹھیک ہے,
1: نہیں تو پھر ٹانگوں کے اندر یا کہیں اور بھی مسل کرامپس ہو سکتے ہیں.
0: صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ جو پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے, اس کے کمزور ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, کس وجہ سے ہوتا ہے, مطلب کوئی ایسا ہم ڈیلی روٹین میں ایسی کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس گلینڈ پہ اثر پڑتا ہے؟
1: اچھا, پیرا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے نا, یہ جیسے اس کی لوکیشن میں نے کہا تھا نا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے,
0: صحیح
1: ہے, تھائرائڈ کے برابر میں, ٹھیک ہے نا, اوپر نیچے لگا ہوا ہے.
0: ٹھیک,
1: اب ہے یہ بہت چھوٹا سا, تھائرائڈ کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹے سے گلینڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ یوزلی جن لوگوں کی نیک سرجریز ہوں, اسپیشلی جو ان کی تھائرائڈ ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, تھائرائڈ گلینڈ نکالا گیا, تو اس میں یہ غلطی کے ساتھ یا ایکسیڈینٹلی جسے کہتے ہیں, تو یہ اس میں ریموو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ ڈیٹیکٹ اتنا کرنا اس کو آسان نہیں ہوتا, اکثر نہیں پتا چلتا. اور تھائرائڈ سرجری کے ساتھ اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر یہ پیرا تھائرائڈ گلینڈ نکل جاتے ہیں, تو یہ کامن ہے بہت زیادہ وجہ اس کی. اور موسٹلی سمجھیں یہی جو ہے بیسیکلی اور کامنلی جو ڈرگ جو ہمیں کاز ملتا ہے پیرا تھائرائڈ نہ کام کرنے کا, تو اس کی اویلیبلٹی ہٹ جاتی ہے کہ وہ ہٹ گیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ وجوہات ہیں وہ لیس کامن ہیں, وہ اتنی نہیں ہیں کہ کنجینٹلی یا پیدائشی طور پہ کسی کا پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہے نہیں یا کام نہیں کر رہا, گروتھ نہیں ہوئی اس کی, یا پھر کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہو گئی جس کا آج کل بہت زور ہے, کہ ہم اکثر پروگرامس میں بات کرتے ہیں کہ کچھ سیلس اپنے باڈی کے ہی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اپنے پیرا تھائرائڈ گلینڈ کو, تو اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو مختلف یہ وجوہات ہیں, لیکن مین ہم نے بتا دیا کہ سرجری کے جو ہے وہ ابھی تک کے کامن ایک کاز ہے اس کا.
0: صحیح. اوکے, ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں پروگرام ہارمون ٹاکس وچ از براٹ ٹو یو بائی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو گروپ. ڈاکٹر فاطمہ زہرا جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹاپک آج جو ہم بات کر رہے ہیں اٹس اباؤٹ پیرا تھائرائڈ گلینڈ, اور اس کی کمی اور زیادتی کے جو ہیں وہ باڈی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ اس گلینڈ میں جیسے اگر یہ زیادہ کام کرے تو اس سے کیا باڈی پر ہمارے اثرات پڑتے ہیں, انسانی صحت کے ساتھ हद तक इस चीज में मुतासर होती है।
1: अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो जैसी कैल्शियम कम हो रहा है तो ये फॉरन डिटेक्ट करता है और ये यूजुअली क्या करता है कि कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है।
0: सही।
1: अब जब ये कैल्शियम लेवल्स को जो बढ़ाता है तो ये यूजुअली बोन से निकाल रहा होता है। अगर ये बोन से निकाल रहा है तो वहां पे हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों का दर्द यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये किडनी से भी उसको एब्जॉर्ब करा रहा होता है, कैल्शियम लेवल्स बढ़ा रहा होता है। तो फिर कैल्शियम जब उधर गुर्दे के पास है, उधर मौजूद है, तो पत्थरी भी हो जाती है इसकी वजह से। तो जब कैल्शियम बढ़ते हैं तो अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि गुर्दे के स्टोन्स के साथ, किडनी स्टोन्स की कंप्लेन्स के साथ होते हैं, तो उनमें भी कैल्शियम लेवल्स देखने की जरूरत होती है। तो इसके अलावा फिर अगेन ये दिमाग के ऊपर असरअंदाज होता है, याददाश्त इससे कमजोर हो सकती है और पेशेंट को बाज औकात बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, परेशान होते हैं, एनजाइटी होती है, इवन डिप्रेशन भी हो जाते हैं कैल्शियम लेवल्स पर जाने से। फिर जो कॉमनली जो एक चीज है लोगों की, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि तेजाबियत है, एसिडिटी है। अब इसकी बहुत सारी और वजूहात हैं, तो उनमें से एक वजह जो है वो कैल्शियम के लेवल का बढ़ जाना भी है। बढ़ने से भी जो है उसको तेजाबियत हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत हो सकती है साथ में मरीज को। अगेन दिल के ऊपर असर होता है, दिल के ऊपर भी इसकी हार्ट बीट को ये इफेक्ट करता है, हार्ट ब्लॉक में जा सकता है पेशेंट। थकन और थकावट और वो कमजोरी, वो वाली चीज, मूड फिर लो हो गया कि काम करने का दिल नहीं चाह रहा, इस तरह की चीजें उसको हो गई पेशेंट को। और फिर नींद के मसाइल वैसे ही हैं, और हो सकता है कि एक तो ये दर्द इतने हो, टांगों में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है तो रात में आंख खुल जाती है,
0: सही,
1: तो नींद वैसे भी डिस्टर्ब हो रही होती है कि एक तो दिमाग पे असर कर रहा है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये टांगों के और इन दर्दों की वजह से भी मरीज सही से नींद नहीं ले पाता।
0: सही सही। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अभी मेरे जहन में ये आया कि जैसे अगर हमें पता करना हो कि हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसका अगर टेस्ट कराना होता है तो इसके लिए क्या टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं?
1: अच्छा, इसके लिए टेस्ट ये होते हैं कि हम कहते हैं कि आप ब्लड के टेस्ट करवाएं। तो ब्लड के टेस्ट पहले तो पता होना चाहिए, कुछ ऐसी अलामत हैं उसके लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर सजेस्ट करना है, जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये जरूर पता हो ब्लड के। और वाइटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाइटामिन डी कम हो गया है तो भी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने फिर कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए करना है ये काम।
0: सही।
1: तो ये एक ऐसा कॉज है कि जिसको हम ट्रीट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वाइटामिन डी करवाना है, मैग्नीशियम कराना है, तो ये वो ब्लड के टेस्ट हैं जो हमें इसके असर बताएंगे। और पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को ब्लड में चेक किया जाता है,
0: सही,
1: तो उससे पता चल जाएगा कम है या ज्यादा है। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ खाली अगर करवाएंगे तो हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है बॉडी में।
0: सही सही। साथ में ये भी मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहबा कि अगर हम खाने के रूटीन के हवाले से बात करें, अपनी डाइट के रूटीन के हवाले से बात करें, तो मतलब अगर ये चीज डिटेक्ट होती है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इम्बैलेंस है, नॉर्मल नहीं है, तो क्या चीजें डाइट में जो है वो शामिल करनी चाहिए, किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज होती है खाने में कि अगर हम वो डेली रूटीन से अपने जैसे निकाल दें तो इस मतलब मसले को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? इस हवाले से भी थोड़ा बताएं लिस्टर्स को।
1: देखिए, खुराक में तो ये अगर ज्यादती हो गई है कैल्शियम की तो फिर तो उसमें हमें कॉज पे जाना पड़ेगा कि पैराथायरॉयड के अंदर मसला क्या हो रहा है, उसके हिसाब से इलाज होगा। और अगर कमी हो गई है, अगर वो किसी वजह से भी काम नहीं कर रहा है पैराथायरॉयड, और पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है अवेलेबल, तो कैल्शियम डेफिनेटली उसको ऊपर से लेना पड़ेगा। तो ऊपर से जो खुराक है, जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, वो अपनी खुराक में ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जैसे दूध दही वगैरह है, दूध और दही की बनी हुई चीजें वो इस्तेमाल ज्यादा करेगा। लेकिन वो तो डेली रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल है वही है ना, तो यहाँ पे तो उसका कैल्शियम है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं है, तो उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पे डोजेस लेनी पड़ेंगी। और वो बेहतर ये है कि डॉक्टर के साथ रुजू करे, कॉन्टेक्ट करे, ताकि वो प्रॉपर उसको डोजेस बताएं कि कितनी लेनी है कैल्शियम और कितने लेवल्स मेंटेन रखने हैं।
0: सही सही। तो बेसिकली इसका इलाज जो है वो कैल्शियम लेने से खत्म हो जाता है, या और चीजें भी हैं जिसको, जैसे डाइट में कंट्रोल करना है या और रूटीन को फॉलो अप, रूटीन में चेंजेस लेकर आनी है, इस चीज में मतलब ये हेल्पफुल साबित होता है?
1: देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि थायराइड पैराथायरॉयड काम ही नहीं कर रहा है या निकल गया है या व्हाटएवर, और उसके कैल्शियम लेवल्स कम हो गए हैं, तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ही चाहिए होंगे। और फिर अगेन उसके कॉज पे कि वाइटामिन डी की वजह से तो नहीं है, तो वाइटामिन डी देके ठीक किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कॉज पे। ठीक है, तो खुराक तो होगी, सप्लीमेंट्स भी होंगे, बाकी कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं है फॉर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कि अगर उसका पैराथायरॉयड कम हो गया है, काम नहीं कर रहा और कैल्शियम कम हो गए। हाँ, अगर ज्यादा हो गए तो फिर एक अलग कहानी है, फिर उसकी तरफ हम आते हैं।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में अब जैसे कैल्शियम की कमी के हवाले से हमने बात की, तो क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत से लोगों को कैल्शियम की एक इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता है, तो जाहिर है कैल्शियम कम होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, बोन बेसिकली आपकी बॉडी का एक ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है कि आपकी बॉडी खड़ी हुई आपकी बोन्स पर है
1: जी।
0: तो अगर यही वीक होगी तो जाहिर है हम लोग कोई काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। हड्डियों के वीक होने के सबब बहुत ज्यादा है, एक तो ये कि प्रॉपर डाइट नहीं लेना, कैल्शियम की कमी, दूसरा ये कि ये कमी बढ़ते बढ़ते किन मसाइल में चली जाती है कि इसका मतलब एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों का भुरभुरापन बेसिकली होता है। तो इस बीमारी को कहा जाता है साइलेंट किलर, सही है। इसका ऑब्वियसली कोई ऐसा सिम्टम जो है बजाहिर जो है वो जाहिर नहीं हो रहा होता, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हड्डियां जो हैं वो खत्म हो रही होती। तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि किस तरीके क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बोन की हेल्थ के हवाले से भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ये टिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को आप गाइड करें इस हवाले से।
1: जी बिल्कुल, बोन्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम का नॉर्मल इनटेक जो है उस हिसाब से वो डाइट ली जा रही हो, दूसरा वॉक है, एक्सरसाइज है, ये करते रहनी है कि बोन मसल स्ट्रेंथनिंग हो और बोन स्ट्रेंथनिंग हो। अच्छा, अब अगर कैल्शियम कम है, पैराथायराइड कम है हार्मोन, तो वो फिर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स भी बढ़ जाता है कि बोन्स जो है वो खोखली हो रही है या ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो रही है। तो उसके लिए फिर स्कैन होते हैं, उसके जरिए उनको डायग्नोज किया जाता है कि जी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है इस पेशेंट में। फिर उसकी कुछ अलग खास अद्वियात भी आती हैं कि जो पेशेंट को हम शुरू करवा सकते हैं अलॉन्ग विद के कैल्शियम और वाइटामिन डी तो दी जाए। तो ये सारी चीजें फिर हैं कि डाइट में एक तो चीजें ऐसी लेनी है उसने जो कैल्शियम हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन डी कम है तो वो देनी है, मैग्नीशियम कम है तो वो देना है, ये सारी चीजें देनी है। और उसके बाद बाकी वही एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल जो है उसने करना है, और फिर स्क्रीनिंग के लिए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करें पहले तो, और उसके बाद उसकी अपनी ट्रीटमेंट है कि जो देनी है अपनी दवाइयां।
0: सही सही। वाइटामिन डी के हवाले से बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने, और क्योंकि बेसिकली वाइटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो तो धूप है।
1: जी जी।
0: मैंने पहले भी ये चीज अपने शो में डिस्कस की है, बहुत से लोगों को इस चीज का अभी भी नहीं पता होगा कि उस धूप को लेने का भी
1: टाइमिंग,
0: एक्सपोजर का टाइमिंग होता है। मतलब जैसे सुबह की कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे सुबह कहते हैं कि 12 बजे से पहले पहले की धूप, यानी सुबह ऑलमोस्ट 8 से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक ये धूप, और फिर 4 बजे के बाद
1: जी,
0: दीज आर द स्पेसिफिक टाइमिंग्स। थोड़ा सा ये हमारे लिसनर्स को क्लियर करें कि टाइमिंग्स क्या है। लोग असल में समझते हैं कि जाएंगे हम चिलचिलाती धूप में तो हमें वाइटामिन डी मिल जाएगा, चलो जाओ वाइटामिन डी हमें अपनी बॉडी में हासिल करना है तो चिलचिलाती धूप में जाके बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये आपको डॉक्टर साहब भी क्लियर करेंगे कि वो टाइमिंग्स, वो स्पेसिफिक चीज जो जिस टाइम धूप में बैठना है, सनलाइट आपने अपनी बॉडी में एक्सपोज करनी है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब।
1: देखिए ये चीज है कि अर्ली मॉर्निंग जो होती है ना सनरेज, वो बेनिफिशियल होती है फॉर दिस वाइटामिन डी सिंथेसिस। लेकिन अगेन फिर बात ये होती है कि देखें हमारा एक्सपोज पार्ट कितना है। अगर हमारे पूरा बॉडी कवर्ड है, पूरे हाथ तक कवर्ड हुए हुए हैं, सब चीजें कवर्ड हैं, तो वो धूप की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होगी भी नहीं, ठीक है ना। तो एक ये फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है कि एथनिकली अगर हम बात करते हैं एशियन पॉपुलेशन की, और स्पेशली हम लोग जो पाकिस्तान से हैं, हमारा वाइटामिन डी लेवल यूएस से ही कम आते हैं, ठीक है। तो जो वाइटामिन डी हम डाइट में लेते हैं वो तो वो है कि जो हमें रोज चाहिए, लेकिन जो कि कम है हमें वो भी रिप्लेस करनी है। अच्छा, अब होता ये है कि लोग वाइटामिन डी के सप्लीमेंट्स और दवाइयां गोलियां सब ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब उसके अंदर हमें दो तीन चीजें देखनी होती हैं कि एक तो वाइटामिन डी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, एक तो जो कम हो गई है तो वो उसको रिप्लेस करना है। अच्छा, अब उसे किस तरह से करना है तो ये डॉक्टर्स के साथ जरूर रजू करें, क्योंकि लोग लेते चले जाते हैं और अक्सर वाइटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: आप उसको भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जितनी जरूरत थी, जितनी की रिप्लेसमेंट करनी थी, उससे ज्यादा रिप्लेस
0: ज्यादा हो गया।
1: तो उसको एक वही वाली बात है ना कि देखें अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा रखा है बॉडी का कि हर चीज को बैलेंस करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम लेवल्स बैलेंस रहने हैं, अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उधर से पैराथायराइड हार्मोन आ गया, और अगर ज्यादा हो गए तो वो पैराथायराइड हार्मोन को ब्लॉक कर देंगे कि नहीं आओ, और ठीक है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये वाली चीजें होती हैं। इसलिए वाइटामिन डी भी ऐसे ही है कि उसको भी आप इस तरह से नहीं कि कोई टॉफी है, कोई एक पानी है या कोई एक ऐसी चीज है जो डेली रूटीन में चाहिए ही चाहिए, उसको देखना है कि कितना लेना है और कहां तक उसके लेवल्स करने हैं।
0: सेम गोज फॉर द कैल्शियम एज वेल.
1: यस, सेम फॉर कैल्शियम, क्योंकि अक्सर कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे होते हुए पेशेंट्स फिर रीनल स्टोन्स के साथ आते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर उसके अलग नुकसान. अक्सर कैल्शियम इतना ज्यादा लोग इंटेक ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो उस वजह से जो है गुर्दों में पथरी हो जाती है, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स का मसला हो जाता है. वो एक अलग पेनफुल प्रोसीजर होता है
1: ऑब्वियसली,
0: कि अब जाहिर है वो आपने कैल्शियम का इंटेक इतना ज्यादा कर लिया तो इस वजह से वो आपको किडनी का इश्यू हो गया, वो चीज जो है बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सके. तो हर चीज की जो ज्यादती है वो भी गलत होती है, इसलिए हर चीज को बैलेंस लेकर चलना जो है बहुत जरूरी होता है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे भी करूंगी, वो ये है कि बेसिकली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही मसला होता है, आप ये बताएं कि ये बीमारी जो है या जिंदगी भर रहती है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये लाइफ टाइम मसला है, इसके लिए हमें मेडिकेशन लाइफ टाइम करनी पड़ेगी या ये ठीक हो जाती है. तो इस हवाले से बताएं, कंट्रोलेबल है या फिर ये लाइफ टाइम चलती हैं इसकी मेडिकेशंस?
1: अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैराथायरॉयड के अंदर ग्लैंड के अंदर मसला क्या है. अगर मसला ये है कि पेशेंट का हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड निकल गया सर्जरी से, तो अब तो वो चला गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता ना.
0: बिल्कुल.
1: तो अब जो ये चीज रिमूव हो गई है तो पैराथायरॉयड हार्मोन तो चाहिए था. अब वो चाहिए किस लिए था? कैल्शियम के लिए.
0: सही.
1: तो होता ये कि फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं और वो फिर लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं.
0: सही.
1: लेकिन डोज कंट्रोल करनी होगी, लेवल्स आपको चेक कराने होंगे ताकि डॉक्टर बताता रहे कि कितने लेने. इनिशियली हर चीज का फॉलोअप फ्रीक्वेंट होता है, बाद में वो फॉलोअप का ड्यूरेशन बढ़ जाता है कि 6 महीने साल पे. और अगर तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इसलिए ज्यादा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर कोई बीमारी है, जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकता है या हाइपरप्लेजिया, वो ज्यादा काम करना शुरू हो गए, तो उसके अंदर सर्जरी होती है, यूजुअली उसको रिमूव ही करना पड़ता है. तो अगर पैराथायरॉयड को रिमूव कर दिया गया है तो उसके बाद, जैसे मैंने बताया ये 4 हैं, अगर ट्यूमर है किसी एक में है और रिमूव कर दिया है तो वो फिर क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मरीज. ठीक है, उसको फिर आगे किसी चीज की जरूरत ना पड़े.
0: ठीक है.
1: और अगर उसके निकाल दिए ग्लैंड अपने सारे, तो गेन कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी.
0: सही.
1: और तीसरा ये कि अगर विटामिन डी था वजह, विटामिन डी कम थी और उसकी वजह से पैराथायरॉयड ने रिस्पॉन्स किया और उसने जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो विटामिन डी अगर हम दे देंगे जो कम थी तो वो उसको बेहतर कर देगा. तो अकॉर्डिंग टू द कॉज या वजह या रीजन जो है उसके हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन ट्रीटमेंट्स बड़े सिंपल हैं. तो इसके लिए और इससे मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो इम्पैक्ट आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: सही.
1: क्योंकि वो जो मूड खराब हो रहा था, जो दिल की धड़कन का मसला था, जो सुनपन था, जो थकावट थी, ये सब चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी उनके साथ.
0: सही सही. अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज का ताल्लुक अगर हम इसका कोई कनेक्शन वेट के साथ भी होता है, वजन में कमी ज्यादती, और जैसे अगर आपका वजन जो है एक जगह स्टक हुआ हुआ है, तो इस चीज को हम इससे रिलेट कर सकते हैं? इसमें ऐसा कोई मतलब सिम्टम निकलता है कि पैराथायरॉयड की वजह से जो है अगर वो इम्बैलेंस है तो वेट का भी मसला होता है?
1: यूजली पैराथायरॉयड का वेट से ऐसा कोई डायरेक्ट ताल्लुक है नहीं.
0: सही.
1: सिर्फ ये जरूर है कि अगर किसी का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है और कैल्शियम बढ़ा दिया है, तो उसमें एक और चीज जो हमने बोली नहीं कि यूरिनेशन ज्यादा होने लगती है.
0: अच्छा.
1: और फिर इनटेक, फ्लूड इनटेक या पानी का इनटेक बढ़ने लगता है, तो उसमें मे बी के वो यूरिनेशन ज्यादा होने की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से मे बी के थोड़ा बहुत वेट पे उसके फर्क पड़ जाए. अदरवाइज या फिर अगर उसको पैराथायरॉयड के अंदर कोई मैलिग्नेंसी हो गई, कैंसर हो गया, तो मे बी कोई इफेक्ट हो जाए. अदरवाइज ऐसे पैराथायरॉयड वेट से ऐसा कोई रेलेवेंट नहीं है.
0: सही सही. तो कुछ ऐसे फूड जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, कुछ ऐसे जैसे कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स होती है या कोई ऐसी दालें होती है या कुछ भी ऐसा होता है जो हम लोग डेली रूटीन में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, तो कुछ अवॉइड करना होता है इसमें?
1: देखिए, पैराथायरॉयड का डायरेक्टली ऐसे कोई रिलेशन नहीं है अंटिल एंड अनलेस के हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है और बहुत ज्यादा किसी ने जो पैराथायरॉयड के ट्यूमर की वजह से अगर हुआ हुआ है, कैल्शियम लेवल बढ़े हुए हैं, तो फिर कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो है ना फूड्स हैं उनको अवॉइड कर ले वो, जब तक कि वो उसकी ट्रीटमेंट हो नहीं जाती है, क्योंकि फिर बाद में तो उसको कैल्शियम रिच चीजें चाहिए होंगी. तो अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं है इसका.
0: सही सही. और डेली जैसे खाने के हवाले से अगर हम बात करें कि मोस्टली कुछ ऐसी चीजें जो यूजुअली अवॉइड करनी है, ऑयली फूड या जंक फूड, ऑब्वियसली ये तो वैसे नॉर्मली भी नुकसान देते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि अवॉइड करना चाहिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, या आपको ऐसी डाइट पे आना चाहिए कि जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ये चीज रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं?
1: जी देखिए, ये सारा कुछ जो होते हैं ना, ये इन्सुलिन वगैरह के साथ तो है, शुगर है या इन्सुलिन है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर, लेकिन फूड का और डाइट का बहुत ज्यादा एक्सेप्ट के जी कैल्शियम के जो ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं और उसमें हमने हमने अवॉइड करना है या लेना है, इसका डायरेक्टली कोई ऐसा इम्पैक्ट फूड और उससे डेली इंटेक से, डाइटरी इंटेक से इस पर ऐसा नहीं होता. इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो दवाएं हैं और वो इलाज हैं जो कि प्रॉपर करवाने की जरूरत होती है, और फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. क्योंकि अगर फॉलोअप नहीं लिया, दवा लेता चला गया और ज्यादती हो गई तो वो भी नुकसानदेह, और अगर नहीं लिया तो वो कमी की वजह से झटकों के साथ आ सकता है, दिल के साथ हो सकता है मसला, तो वो अवॉइडेबल है.
0: वो दिल के साथ क्या ऐसे मसाइल हैं?
1: दिल के देखें, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो भी मसला है कि वो दिल की धड़कन को कम करके, दिल में हार्ट ब्लॉक हम एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तो दिल बंद हो सकता है, धड़क नहीं रहा या मसला हो रहा है, घबराहट. मरीज जो आता है वो अक्सर पैल्पिटेशन या घबराहट के साथ आते हैं कि दिल बंद हो रहा है, डूब रहा है या घबराहट हो रही है.
0: ठीक है.
1: इसी तरह अगर कैल्शियम लेवल्स कम हो रहे हैं तो उसके अंदर भी हार्ट बीट का इरेगुलर होना या बढ़ना, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं. तो पेशेंट को दिल के ऊपर कोई ना कोई सिम्टम जो घबराहट की सूरत में आ सकता है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट होकर पता चल जाता है कि कैल्शियम ऊपर नीचे है या नहीं, तो ईसीजी करते हैं अगर दिल की पट्टी की जरूरत हो.
0: ठीक है. अच्छा, इसमें ऐसा कोई ताल्लुक स्वेटिंग से, कोई ऐसा ताल्लुक है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है या स्वेटिंग बिल्कुल कम हो गई है? मतलब जब ये ग्लैंड जो है इसका मसला होता है, इम्बैलेंस होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो स्वेटिंग का ऐसा कोई ताल्लुक है?
1: जी, इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कि जब पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉइड या हाइपर कैल्सीमिया हो रहा होता है तो उसके अंदर उसको स्वेटिंग हो सकती है ज्यादा. लेकिन मेनली जो हम स्वेटिंग की बात करते हैं वो दूसरे हार्मोन्स में कर रहे होते हैं, लेकिन इसका असर भी हो सकता है. बहुत कॉमनली नहीं देखा गया है इसके साथ आए, लेकिन यह कि असर है.
0: सही. और जो जिन लोगों को शुगर का मसला है और ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए ये मसला जो है वो मतलब कितना और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है?
1: देखें, अगेन शुगर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर तो यूं डायरेक्टली नहीं कर रहा होगा, लेकिन यह है कि जैसे हार्ट का अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपर पैराथायरॉयड या पैराथायरॉयड के ज्यादती में भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है. तो अगर कोई ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसको पैराथायरॉयड का मसला भी हो जाए तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा, प्लस में जाएगा उसको, मतलब नुकसान पहुंचाने के एतबार से.
0: सही.
1: और अगर डायबिटीज है तो अगेन वही के उसके फिर किडनीज पे इफेक्ट हो रहा होता है, तो अगर पैराथायरॉयड भी उसका आ गया बीच में तो वो किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है है कि गुर्दे के ऊपर. तो हमने कहा ना कि कैल्शियम बढ़ रहा है, पैराथायरॉइड वहां से भी अब्सॉर्ब करा रहा है, यूरिनेशन करा रहा है, तो उसमें भी फिर इफेक्ट पड़ सकता है.
0: सही. अच्छा, इसका जो रेशियो है वो ज्यादातर मर्दों में पाया जाता है या औरतों में इसका ज्यादा रेशियो पाया जाता है इस मसले का?
1: अच्छा, पैराथायरॉइड के जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेल्स और फीमेल्स में आपको मिलता है. फीमेल हमारे पास ज्यादा आती है पेशेंट्स, उसका भी इतना कॉमन नहीं है, लाइक 1 in 50 इतना रेशियो है कि इतने मरीजों में से आपको एक खातून मिल जाएंगी. और दूसरी बात यह कि ये यूजली यंग पेशेंट्स नहीं, हमारे पास ओल्ड पेशेंट्स आते हैं, कुछ यंग पेशेंट्स भी आ सकते हैं. असल में इसके डायग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है, यंग पेशेंट्स में थोड़ी सी अलामत अलग होती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं. कभी ऐसा होता है कि 50 साल से उम्र से ज्यादा जो लोग होते हैं वो आपके पास ज्यादा आते हैं और आप फिर उनको स्क्रीन कर रहे होते हैं, तो उनके क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट वैसे ही हो रहे होते हैं तो आपको उनके बारे में पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाते हैं.
0: सही. ठीक है. जब ये हार्मोन जो है ये वाला इम्बैलेंस होता है तो खवातीन के जो मेनली साइकिल्स होते हैं उस पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे कॉम्प्लिकेशन कोई होती है?
1: जी, ये थोड़ा बहुत कर सकता है. रिप्रोडक्टिव लाइफ पे भी इसके इफेक्ट्स होते हैं, तो ये जो है सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन के, तो ये वहां पे भी इफेक्ट कर सकता है पेशेंट को.
0: सही सही. मतलब मोस्टली जो है बस ये जाहिर है क्योंकि जिस्म का कोई भी जो है आप जाहिर है ग्लैंड या हार्मोन जो है इम्बैलेंस होता है तो वो कहीं ना कहीं असर कर रहा होता है.
1: जी.
0: तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा आखिरी मैसेज कि हम अपनी लाइफ को इन हार्मोन इम्बैलेंस से कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से जो है वो एक अच्छी डाइट का इंटेक कर सकते हैं, ये हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा गाइड कर दें. क्योंकि मोस्टली जो है हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं होता, हम लोग यूजुअली जो अपनी डेली डाइट में खा रहे होते हैं इतना अनहेल्दी इंटेक कर रहे होते हैं फूड का कि हमें नहीं अंदाजा हो रहा होता है. तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं.
1: देखिए, फूड तो हेल्दी हेल्थ के लिए जो आप आज खाएंगे वही आपकी हेल्थ है.
0: बिल्कुल.
1: ठीक है. अब इसका ये नहीं हो सकता कि मैं बहुत अरसा जिंदगी का गुजार के फिर हम अपनी फूड को तवज्जो दें, तो शुरू से देने की जरूरत है क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपको बैलेंस कराएगा.
0: Exactly.
1: जैसे कि हमने इसके हवाले से बात की है कि वाइटामिन डी है, कैल्शियम है, या आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि एथिकली भी आपके लिए, एथनिकली जो है आपके अंदर डेफिशिएंसी है इन चीजों की, तो आप उनको ऊपर से लें खुराक के जरिए, और उसके बाद अगर दवा की जरूरत पड़े तो दवा کے ذریعے. تو خوراک کے اندر ہیلدی فوڈ لیں, لیکن یہ بھی اتنا بھی نہ لے لیں ہم کہ اس کے مقدار باڈی میں بڑھا لیں. تو اس کو اوائڈ کرنا ہے, جتنی ریکمینڈیڈ ڈوزز ہیں یا آپ کی جو بھی فروٹ اور فوڈز ہیں وہ سلیکٹ کر کے اس طرح سے کھائیں کہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہو, آپ کو وائٹمنس بھی مل رہے ہوں, تو ویجیٹیبلس اور فوڈس کا انٹیک بھی ہو الانگ وتھ کہ جی روٹی چاول اور جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. کوئی ایک چیز سلیکٹ کر کے ڈائٹ پلان میں نہیں شامل کر لیں کہ بس خالی ہماری یہ والی ڈائٹ ہے اور باقی چیزیں آپ نے چھوڑ دی تو پروٹین کا آپ سے گئے, یا پھر ہم جو ہے وائٹامنس والی ڈائٹ لے لی ہے یا آپ نے وائٹامنس کو چھوڑ کے پروٹین اور کارب لے لیا. تو بیلنس کر کے چلنا ہے, کیونکہ سارے گلانڈز پہ اور سارے ہارمونز پہ اور باڈی کے اوپر خود یہ جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی ڈائٹ.
0: صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ, تھینک یو سو مچ. ہم اپنے لسنرز کو بتا دیں کہ آپ سن رہے تھے پروگرام ہارمون ٹاکس وچ از براٹ ٹو یو بائی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو گروپ. اور ابھی چاہیں گے آپ لوگوں سے اجازت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. آج ہمارے شو کا جو ٹاپک تھا اٹ واز اباؤٹ پیرا تھائرائڈ گلینڈ, اس کے امبیلنس ہونے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ لسنرز فار بینگ ہیئر اینڈ لسننگ ٹو دس شو, اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاطمہ فار بینگ ہیئر. بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
2: Smooth music, smooth music, non-stop, non-stop, 24 hours, 24 hours. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100.
3: مہیانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
5: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: Like us on facebook.com/fm247365
2: fm247365. Smooth music, non-stop.

0: Genie in Radio. Radio.
1: KHI space your text message. Send it to 3636.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. If you wanna be with me, I can make your wish come true. I'm a genie.
5: Genie in radio.

की भी तारीफ की है और कहा है प्लीज प्ले द ओ एस टी ऑफ कभी मैं कभी तुम, चल दिए तुम कहां पे। ठीक हो गया है जनाब, जरूर प्ले कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज।

Alrighty, Janelle, welcome back. Messages काफी सारे हमारे पास आ रहे हैं. हमारे पास वाजिद का मैसेज आया है. उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम जायज. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं वाजिद, आप बताइए आप कैसे हैं. एंड उन्होंने कहा है, सजाद अली का सॉन्ग रक्षे वाले प्ले कर दें. अच्छा, चलें ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड जयपाल ने हमें मैसेज किया है. हेलो जयपाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं. और मैं ये सॉन्ग देख लेती हूँ, मुझे चॉइस में बता दो कोई, अगर ये ना हो तो कौन सा प्ले करें. इसी के साथ साथ हमें मैसेज किया है रीमा ने. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. शाम से पहले लगा दें सॉन्ग. ठीक है, चलेंगे, जरूर आपके लिए लगा देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, बहुत शुक्रिया. Meanwhile, we are moving on towards another track. आप लोग मैसेजेस हमें करते रहिए. 3-6-3-6 पर तरीकेकार बहुत ही आसान है. और अगर आप चाहें तो पेज पे भी बिल्कुल आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं. पेज पे भी मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है. facebook.com/rj.jasmine jazmine

0: Genie in Radio. Radio.
1: Alrighty, so now welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan and aap log hame bilkul message kar rahe hain 3636 per. And facebook.com/rj.jasmine bibi aap log hame messages kar rahe hain. Okay, Myra ne hame page pe comment kiya hai. Walaikum assalam. Bilkul theek thaak, aap bataiye aap kaisi hain? कदी आओ ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आतिफ असलम का. ठीक हो गया है मायरा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, समी शेख ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए. वालेकुम अस्सलाम. एन ने लिखा है सलाम टू ऑल द लिसनर्स. ऑब्वियस सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया है हसन रहीम का. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज समी शेख, बहुत शुक्रिया. सो जनाब, आप लोग इसी तरीके से हमें पेज पर मैसेजेस करते रहिए और 3636 पर भी मैसेज करते रहिए. मीनवाइल हम जा रहे हैं मायरा के सॉन्ग की तरफ. द ट्रैक इज कदी आओ ना, इट्स बाय आतिफ असलम. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. मैसेजेस करते रहिए और facebook.com/rj.jasmin पे भी आप अपना रिक्वेस्ट भेजते रहिए. इस ट्रैक के बाद आप लोग के मैसेजेस इंक्लूड करते हैं, हमारे साथ रहिएगा.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: FM 247365.
6: Genie in radio.

0: Genie in radio. Radio.
1: All right, it's now. Welcome back. So you're listening to FM 100 Pakistan. आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर और facebook.com/rz.jasmine पे भी आप अपना feedback हमें दे रहे हैं facebook.com/rz.jasmine पे जो भी request करनी आप कर सकते हैं 3636 पर भी आप हमें message कर सकते हैं. शाहिद ने हमें message किया अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इन्होंने बस यही लिखा है और आगे इनका मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं आया. दोबारा से मुझे मैसेज कर दें आप क्या कहना चाह रहे हैं. शाहिद वरीशा ने मैसेज किया है कराची से, रफ्ता रफ्ता आतिफ असलम का सॉन्ग जो है वो प्ले कर दीजिए. चलें ठीक है, डन हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और भी हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आज हम शो पर जो बात करने वाले हैं बड़ी मजे की है एंड इंटरेस्टिंग भी है. तो खाने के हवाले से ये बात करेंगे हम. आप लोगों ने बताना है कि डू यू लाइक मोर स्पाइसी फूड या फिर खाने में मिर्चें होनी नहीं चाहिए. टेस्ट क्या पसंद आता है आप लोगों को खाने का. फूड शुड बी स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी और बहुत ज्यादा स्पाइसी या फिर बिल्कुल फीका खाना होना चाहिए. लेट अस नो ऑन 3636 किस तरीके का खाना आप लोगों को पसंद है. अच्छा, अब खाने के हवाले से बात कर रही हूं, आप लोगों से ये पूछ रही हूं. तो कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्वियसली स्पाइसेस अच्छे नहीं रखते ज्यादा. जैसे चाइनीज फूड है उसमें हम ज्यादा स्पाइसी जो है, कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें स्पाइसी लेवल जो है, स्पाइस लेवल जो है ज्यादा होता है लेकिन कुछ में कम होता है. इसी तरीके से पाकिस्तानी खाने भी कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि वो मिर्चों से बनता ही नहीं है. उसमें कहते हैं कि मिर्चें नहीं डलेंगे, ज्यादा से ज्यादा काली मिर्च डल जाएगी. तो आप लोगों ने बताना है कि आप किस किस्म का खाना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं. facebook.com/rz.jasmine पे आप बता सकते हैं. बहुत सारी रिक्वेस्टें आ गई हैं आज तो कसम से. हनान ने मैसेज किया कराची से, राज़े उल्फत का ओएसटी जो है वो चला दीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और हमें समी शेख ने भी मैसेज किया था, ऑब्वियस खाना उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हसन रहीम का. चेक करते हैं. मीनवाइल एक गाने की तरफ जा रहे हैं. हमारे पास यार ये सजाद अली के गाने की रिक्वेस्ट आई थी और ये किसने, जरीन नूर ने रिक्वेस्ट किया था. जरीन नूर इफ यू आर लिसनिंग योर सॉन्ग इज नाउ प्लेइंग. ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी यार. ये गाना आपके लिए है. मिलते हैं इस गाने के बाद. ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय सजाद अली.

0: Alrighty, Dinah, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान और शो का नाम है जीनी इन अ रेडियो. सो जनाब, आप लोग की रिक्वेस्ट इस शो में जो है वो शामिल की जाती है और आप लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं 3636 पर. और माशाल्लाह आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं. एंड facebook.com/archer.jasmine वहां पे भी आप इनबॉक्स करके हमें अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बता सकते हैं. अच्छा जी, समी शेख ने हमें जो है वो पेज पे इनबॉक्स में मैसेज किया है और बोला है कि मैंने आपकी आपका मिनी व्लॉग देखा था एंड आपने क्या आपको पठान के होटल की चाय पसंद है. यार थैंक यू सो मच, आपने देखा बिल्कुल. एक व्लॉग हमने शेयर किया है, वो मैंने बनाया है एक मार्ट का और जाहिर है बड़ा मजे का व्लॉग है और इंटरेस्टिंग सा है. आप लोग उसे देखें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा उसे सपोर्ट करें. एंड पठान के होटल की चाय, यार इस पे तो मैं मतलब पूरी किताब भी लिख दूं ना तो शायद वो भी कम है. एक तो चाय, वैसे ही मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूं, ठीक है, चाय को तो मैं मना नहीं कर सकती. आई एम अ टी पर्सन एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट आई कैन नॉट नेवर एवर एवर से नो टू चाय. सही है, कुछ भी हो जाए, चाहे शदीद गर्मी हो और जैसा भी मौसम हो. और अक्सर लोग कहते हैं भाई गर्मियों में हम चाय नहीं पीते हैं, जो कि जो चाय लवर होते हैं लेकिन वो कह रहे होते हैं कि हम गर्मियों में चाय नहीं पीते. तो भाई मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूं. मैं तो चाहे शदीद गर्मी हो रही हो बस चाय मुझे चाहिए. चाय अगर कोई मुझसे पूछ ले तो चाय को मना नहीं होता. और पठान के होटल की चाय, उसकी तो बात ही अलग होती है ना यार. वो तो मतलब उसका कोई एक तो कंपेरिजन ही. हाँ, घर की चाय भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन जो वो चाय होती है उसका यार मजा ही अलग है. आपने क्या दिला दिया मुझे, अभी बस मैं शो वाइंड अप करके फौरन से किसी पठान के होटल पर रुके चाय पीकर ही घर जाऊंगी. यार सीरियसली. ओके, सो टॉपिक जो है वो हमारे शो का ये है कि आप लोगों को खाना किस तरीके का पसंद है. वेरी स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी या कम्प्लीटली नॉन स्पाइसी, के बिल्कुल ही नहीं खाने में हमें मिर्च चाहिए ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए. सही है, कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं और कुछ लोग जो भर के मिर्चें डालो, मिर्चें खत्म नहीं, कैसे मिर्चें तो है ही नहीं सामने, जो है खाने में दिख ही नहीं रही. और कुछ लोग जो है बस नहीं, दरमियानी जो है दरमियानी स्पाइसी रखना है, जो है स्पाइस लेवल जो है वो मीडियम होना चाहिए. मैसेज करके आप लोग बता रहे हैं, काफी सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं. एंड ये मैसेज किया है हमें, मुझे तेज मिर्च नहीं पसंद. जरीन नूर ने लिखा है कि मुझे तेज मिर्च नहीं पसंद. अच्छा ठीक है, ये ज्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं खाती हैं. ओके, शाहिद ने हमें मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि मीडियम स्पाइसी जो है वो, मीडियम जो है खाना स्पाइसी वाला जो है वो सही होता है, बेहतर होता है. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज्यादा मिर्चें भी जो हैं वो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है. एक नॉर्मल स्पाइस लेवल होना चाहिए. अब वो मैं उन लोग की बात कर रही हूँ जो इंतहा का जो है वो उनका स्पाइस लेवल जो है वो बिल्कुल अनकाउंटेबल होता है. मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा होता. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो, और कुछ बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, उनको स्पाइस लेवल चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नमक वाला खाना सही है और इवन काली मिर्च भी नहीं, सिर्फ नमक वाला खाना खाएंगे और उसमें कुछ नहीं पड़ा होना चाहिए. कोई किसी किस्म की कोई मिर्च नहीं होनी चाहिए, ना हरी मिर्च होनी चाहिए, ना लाल मिर्च होनी चाहिए, ना काली मिर्च होनी चाहिए. मिर्च के नाम से मतलब उनको चढ़ाती है. ओके, जरीन नूर ने कहा है बहुत थैंक्स आपने सॉन्ग लगाया. नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है. आपका थैंक्स कि आपने मैसेज किया. अच्छा, रीमा ने हमें मैसेज किया है, खाना जब तक स्पाइसी ना हो मजा नहीं आता. और इन्होंने लिखा है कि खाना जो है स्पाइसी होना चाहिए. ठीक है, आप स्पाइस लवर हैं, आपको स्पाइसी खाना पसंद है, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज रीमा. रीमा आज आई गेस फर्स्ट टाइम शो सुन रही है, अब आपने रेगुलर सुनना है, ठीक है. जो भी फर्स्ट टाइम मेरा शो सुनता है मैं उसको ये बोलती हूँ कि रेगुलर लिसनर बनना है. वेनेसडे एंड थर्सडेज आर द टाइमिंग ऑफ द शो, 2 से 4 आप सुन सकते हैं. ओके, अभी टाइम आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा. और रिक्वेस्ट भी जल्दी जल्दी फुलफिल करनी है यार, सो ब्रेक के बाद आती हूँ और फिर गाना प्ले करती हूँ. साथ रहेगा हमारे।
1: कूल किंग, बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

जी जनाब, वेलकम बैक. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आलमगीर, शाम से पहले. एंड हमारे पास मैसेज आया है रीमा का, और कह रही है मुझे भी चाय बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद है. खाना हो या ना हो, बस चाय होना जरूरी है. एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा सॉन्ग लगाया. यू आर मोस्ट वेलकम. सेम यार, यही चीज जो है वो मेरे साथ भी है. एंड चाय के बगैर जो एक तो दिन शुरू नहीं होता, और चाय के बगैर दिन खत्म नहीं होता. यही सीन है. ओके, 3:00 जो है वो 38 मिनट हो गए हैं, एंड 4 बजे तक यानी हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं. तो आप लोग जो हैं वो मैसेज कर सकते हैं हमें. अच्छा जी, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बंद किया है अभी, थोड़ा मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड के बगैर आप लोगों से बात करूँ. शाहिद ने भी एक बड़ा अच्छा सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, अकेले ना जाना हमें छोड़ के तुम. ठीक है, अहमद रुश्दी साहब का आपने बड़ा खूबसूरत सा गाना रिक्वेस्ट किया है, जरूर देखते हैं और आपके लिए प्ले करते हैं. बहुत शुक्रिया. सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को खाना किस तरीके का पसंद है. स्पाइसी ज्यादा पसंद है, नॉन स्पाइसी या फिर मीडियम स्पाइसी. ठीक है, स्पाइस लेवल कैसा होना चाहिए आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके. मीनवाइल एक और सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं. ये है रिक्वेस्ट समी शेख की. सो दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. और हमें रफ्ता रफ्ता भी सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था, वो किसने रिक्वेस्ट किया था यार, मैं नाम भूल गई हूँ. वरीशा ने रिक्वेस्ट किया था. ओके वरीशा, आपके लिए गाना चलाएंगे. पहले हम ये समी शेख का सॉन्ग चला रहे हैं और फिर आपका सॉन्ग इंक्लूड करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑब्वियस.

0: HI space your text message. Send it to 3636.
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफादे आमा के लिए यह पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are

0: Genie in Radio. Radio.
1: जी जनाब, वेलकम बैक. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट वीक, दो से चार, वेडनेसडे एंड थर्सडे. सुना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. facebook.com/rj.jasmine पे आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं एंड facebook.com/fm247365 इस पर भी आप अपना फीडबैक बिल्कुल हमें दे सकते हैं. सो मुझे दीजिए इजाजत. टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़.

0: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज़ है और ये आवाज़ उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS, FinTech, HealthTech। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
1: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी।
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
4: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil. जैसे चलता फिरता एसी.
3: And अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: Always remember, parents are Pakistan's first line of defense. You are decisive for a drug-free society.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमपुर खान, अक्रॉस द नेशन,
4: दिस इज FM 100,
5: अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर सदफ अहमद आसिम है। मैं डाउ यूनिवर्सिटी में डर्मेटोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट सिंध की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक्नी एक बहुत ही कॉमन स्किन की कंडीशन है और इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक के अंदर। हमारा मकसद आप सबको सही इन्फॉर्मेशन फराहम करना है ताकि आपके मिसकॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप बर वक्त सही इलाज करवा सकें।
6: ये पैगाम एडको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار. Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround. 3-year warranty aur 6-month free replacement ke saath aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Hire, more creation, more possibilities.
4: Cool King.
5: देख के नहीं चलाता क्या?
6: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
7: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
10: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
9: दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार.
11: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
12: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा. रिक्शा ट्रक हो या हो
7: किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
10: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
7: And
12: फिनिक्स

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
3: कंपार्टमेंट में और रखें आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल.

0: No worries.
1: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
2: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: And

Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.